0: दश वारी बाट सदियों दासी बनाए पछी आली उठ दश खेत खेत भरी का बाली हराए पछी कल्ला जुट दश भेल ले दिन दिन धक्का लगाए पछी कर्मी उठ दश काम बाट श्रम को हिस्सा न पाए पछी मौरी जुट दश गोल बाट महका चाका हराए पछी बेलचा उठ दश तीर बाट सपना बरसौ बगाए पछी गिट्टी जुट दश ज्ञान माथि घुनाले अड्डा जमाए पछी होत्रा उठ दश लाल ताप बटुली बासै उठाए पछी कोदाला पनि जुट छ साथ हसिया गासै न पाए पछी चूल्हो उठ दश शीत बर्सी रहनी न्यानो हराए पछी छाना जुट दश रात भित्र घरमै तारा उदाए पछी नाम्लो उठ दश माथ बाट भरिया जागेर आए पछी दाम्लो जुट दश मुक्तिगामी पथमा चैतन्य पाए पछी
1: अन्तिम श्लोक
0: मुर्दा उठ दश है चिहान उधिनी मृत्यु बिकाए पछी हड्डी जुट दश गर्त बाट युगले साक्षी मगाए पछी ब्युझन्छन् इतिहास पृष्ठ बदली बाङ्गो बनाए पछी झुल्कन्छन् रवि रातले मन परी सत्ता चलाए पछी झुल्कन्छन् रवि रातले मन परी सत्ता चलाए पछी
1: धन्यवाद।

0: ढुक लेन ढुक्क हूँ और वो माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: सेलिटरी सामान
1: अधिकारी चॉकलेट
0: बोजो फ्रेंड्स
1: अधिकारी चॉकलेट
0: धारा फिटिंग
1: अधिकारी चॉकलेट
0: कायल मार्बल
1: अधिकारी चॉकलेट
2: ए दाई की को नारा बाजी हो दाई
3: अधिकारी सप्लायर्स के बारे में जानकारी दिदै हिडेको हो नि।

0: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को और को परिभाषा
1: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो।
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: जरूर माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो।
1: जरूर माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

प्रति एसईई परीक्षा को प्रवेश पत्र पुनः शुल्कीय लक्षित वर्ग कोटा में एसईई परीक्षा को प्रवेश पत्र पूर्व शुल्कीय लक्षित वर्ग कोटा में समावेश होने प्रशिक्षार्थी आफू पर्ने लक्षित वर्ग खुलने कागजात को सकल स्कैन कर प्रति समेत संलग्न गर्नुपर्ने छ। फारम भरने अंतिम मिति 2083 साल जेठ 13 गते बुधवार राति 11:59 सम्म। फारम शुल्क ₹1000। नोट, अनलाइन आवेदन फारम भर्दा कुनै प्राविधिक समस्या देखिएमा वा सहजीकरणका लागि शिक्षालयले आवश्यक सहयोग गर्नेछ। थप जानकारीको लागि नरेश बराल शिक्षालय प्रमुख 98513 39757 इन्जिनियर अजय कुमार यादव 98161910 66 नवीन काफले सूचना अधिकारी 98549050 39 रश्मिला बंगाल अधिकारी 98549596 34 संतोष नगरकोटी 98511207 98 नीलकण्ठ बहुप्राविधिक शिक्षालय धादिङ।

0: कोई कोई ना ढुक्को हूँ प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड सरकारी शुल्क में निजी अस्पताल में उपचार काठमांडू को वसुंधरा स्थित 100 बेड को मल्टी स्पेशलिटी केडीसी जनरल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक र आधुनिक प्रविधि सहज र गुणस्तरीय उपचार अब सरकारी मूल्यमै पाउनुहोस् 24 घंटा आकस्मिक सेवा ओपीडी सेवा शल्यक्रिया सेवा साथै ल्याब एक्सरे अल्ट्रासाउंड इको इंडोस्कोपी लगायत आधुनिक रेडियोलॉजी सेवाहरुको लागि हामीलाई सम्झनुहोस् केडीसी जनरल अस्पताल संपर्क नंबर 01-4985-910 01-4985-911 तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: Life Insurance. Cool Radio.
1: Hi, my name is Ravi. I'm from the Sangha Hindu. मुझे आज तो मान मुझे चाहिए देने चाहिए क्यों ना उस तक आता ये पसंद को तो रेडियो धाबिंग का पर दिखे अपन बड़ी रंच है तो इसे बड़े बड़े नहीं ले गए और रेडियो धाबिंग में दिखे अपन दिया आई रंच है
2: हजुर तपाईं पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाउन चाहनुहुन्छ भने अहिले रेडियो धाबिंगमा विज्ञापन दिइहाल्नुस् यसले तपाईंको व्यापार मात्र होइन तपाईंको परिचय पनि दिनेछ
3: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धाबिंग 106 मेगाहर्ज

0: रेडियोधारी समय संकेत
1: अहिले साझाको सात बज्यो। शिवम सीमेंट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै सिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा।

0: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।
1: उच्च गति भरपर्दो कनेक्टिविटी र बढ़िया नेटवर्क द्वारा संचालित सीएम।

पुष्टर चौतारा बात अबे पुष्टर से एक जना पकड़ाओ थबन सुनान हुई अधिकारी भारी द्वारा दुर्घटना निगरण अभियान संचालन दसवा प्रहरी ठूल परिमाण में अवैध विद्युतीय स्रोत भेट से आठ जना पकड़ाओ गये कर तथा ऋण व्यवस्थापन में संदेश में आगे सुधार करना दिए होते सुझाव अध्यागमन विभाग में डिजिटल पैन कार्ड लागू इसका साथ ही अहिलेलाई खबर यति नै भोलि बिहान 6:45 बजेको खबर लिएर आउँछु प्राविधिक मित्र अभिकललाई धन्यवाद दिदै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म ब्रेक बिदा हुन्छु नमस्कार।